अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हस्से बस्तो होए होए सो उजर।

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह। जेह बा स्वादी लीलत लोह, ऐसे कनक कामनी बांध्यो मोह। ज्यों मद माखी संचय अपार, मद लीनो मुख दीनी शार। गऊ बाश कौ संचय खीर, गला बांध दोहे ले अहीर। माया कारण श्रम अत करै, सो माया लै गाडै धरै। अत संचय समझै नहीं मूड़, तन धरती तन होए गयो धूड़। काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावै।

मामनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरै अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड मन हर बे मुखन को

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस साधे अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त सिओ काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किश तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतनक लागै ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कबीर।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सिउ अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तौ धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिउ सत साची गुरमत नाम आधारू मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

पार। पीतर अमृत सोई जन पावे, जिस गुर का शब्द रत्न आचार। रहाव दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनु नदर करे करतार। काया महल मंदिर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाईए, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला घर दूजा,

तां तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट मह सास सास गए काया ढल पाए तां कै पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सात्य नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

सब शाम रात परम दै दिसह थाम देहे ना नाउ ना हुए जात उतै देहो ऐतै सब रात साध कर समदा तृष्णा क्यों तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावे सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निदान से तनवंत जिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला

काल खंभ हाथ तृष्णा उडना की डांज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों बखाले त्यों वेखा वीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला।

गुरमत सत संगत ना विछड़ है अन दिन नाम संभाल सबना करता एक तू नित कर देख है विचार एक गुरमुख आप मलाया बख्शे भगत भंडार तू आपे सब किछ जानदा किसे आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नदरी पाया जाय अन दिन हर हर उच्चरै गुर कै सहज सुभाई।

त्रिपतास्ते सत्य नाम संवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों हो आप गवाया।

प्रभ जाता, दूजा अवर ना कोई। आपे करे कराए प्रभ आपे, आपे नदर करे मन तन राता गुर की बाणी। सेवा सुरत समे अंतर वसया अलख अपेवा, गुरमुख होए लखाए। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै, भावै तिवै चलाए। मलार महला तीजा तो तुके, सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान, जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह, साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै, अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी, हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खेलै हुक्म का बहंदा, एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जा आपे नदर करे हर प्रभ साचा, ता इहो मन गुरमुख तत्काल वास आवै। इस मन की बिद मन हूं जानै, बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू, भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा, जियो पिंड प्राण सब तिसके, घट घट रहे आसमाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ, मन तन भीजै एक लिव लागै। सहजे रहे समाई, गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै। एक नाम लिवलाई।

हर रहाव माया ममता कर पैलाई एहो हुक्म कार श्रेष्ठ उपाई गुर प्रसादी बूझो पाई सदा रहो हर की शरणाई सो पंडित जो त्यहां गुणा की पांड उतारे अनदिन एको नाम बखाने सतगुरु की ओहो दीखिया ले सतगुरु आगे शीश तरे सदा अलग रहे निर्भ

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह बधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेवह आप गवाए हौ तिन जन के सद लागो पाए हौ जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महा

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुरमत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीर्थ देवी थापे, सब तितने लोचे हैं धूर साधु की ताई, हर का संत मिल

हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावे है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप करे सृष्ट सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

मनमुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हउमै विच जल जाई, तिन सिद्ध ना बुद्ध भई मत मद्दम, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम पकरे बिललाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सहज सुभाई, नाम निदान वसिया घट अंतर, रसना हर गुण गाई, सदा आनंद रहत नराती, एक शब्द लिवलाई, नाम पदार्थ सहजे पाया, एह सतगुर की वडियाई, सतगुर ते हर हर मन वसिया, सतगुर को सद बल जाई, मन तन अर्प रखो सब आगै।

ये बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

खीर आधार बारिक जब होता, बिन खीर रहन ना जाई, सार संभाल माता मुख नीर, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारिक पिता प्रभ दाता, भूल है बारिक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहाऊ। चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अग्न कर मेल, मात पिता कंठ लाए राख, आनंद सहज तब खेल। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरे, मन बांचे सो लैसी। पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे, मोहे हृदय बस है नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, तजियो सगल अंदेसा। कार्य सगल आरंभियो घर का, ठाकुर का परुसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी।

बैरागी त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी।

नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दी।

उदहत पयो पूर्ण पावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन पै सागर।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल ले।

जगदीश्वर एकत सदा हजूरे नानक रब रहो सब अंतर सर्ब रहे आपर पूरे मलार महला पंजवां हर कै भजन कौन कौन ना कारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप

अचुत अबनासी किलबिख काढे है शांत कल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवां बहु विद माया मोह हिरानू कोट मधे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू।

अंतर्जामी सब मह वर्तै तां भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन।

महानंद करहु दास हर के नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवां चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार गुरमुख त्रै गुणियां विस्तार गुरमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाईऐ गुर उपदेस हर हृदय वस्यो सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाउ गुर के चरण विटोह बल जाउ गुर के गुण अन दिन नित गाउ गुर की धूड़ करो इशनान साची दरगाह पाईऐ मान गुर बोहित भवजल तारनहार गुर भेटिया ना होए जोन अवतार गुर की सेवा सो जन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई।

राखे सब जंत गुण गाव हो नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जान है प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवा गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाई है मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाए साद संग सद हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सलाहे नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाए रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

मान अपाव सगर किए, नह दुख सा कहलाहे। पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रिय की सोब सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत, बहु विध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर, घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायो,

रहाउ। दर्स सफलिहु दर्स पेखियो, गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारी, विषम विषम विषम भई, अग कोट हरते नाम लई, गुरचरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही, भगत टेक तुहारी, जन नानक सरन द्वारी, मलार महला पंजवा, बरस सरस आ गया, होहे आनंद सगल भाग रहाउ। संत संगी मन परफड़ै, मिल मेघ धर सुहाग, कन घोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगी मन मोह, त्याग माया तो मिल संत नानक जा।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन।

फिर भावै प्रेम सखाई तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण अकासी दिगसै सहज सुपाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मलाई चात्रक जल बिन प्रियो प्रियो टेरै बिलप करे बिललाई कनहर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांदी पिर देस नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रवृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रियो प्रियो करै सबै है जेती गुर भावै प्रियो पाई प्रियो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तौ नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जाग

धर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिन सत बार न लागे बबरे, हौ मैं गर्भ खपै जागे ऐसा रहाऊ। जय जगदीश प्रभु रखवा।

तन तापै कापर अंग ना सोहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

आहाउ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कै तकिया सा चैतान नाम संभाल सरूड़ी बाण थै भावै दर लहस प्राण ऊडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना ऊंची धार निज कर वासा तह मग ना चालन हार जित कर वसै तू है बिद जान है बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होई सब जग दबिया छापै करन पलाव कर बिललातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मह नाम छडाई जे गुर शब्द सिंहापै एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर एक सतगुर कै भै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी हिंद वरसै धरत सुहावी घट घट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे भाता कार कमाए एक शब्द राचे सच समाए।

सिर उभो खुदया निंदरा कालं नानक नाम मिले मन पावे साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जाचे हृदय संभाल रहाउ एक जी कह जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्व जी की ए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत भारी ऊड़ न साके पंख पसारी।

हृदय साचा शब्द सुमाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखे उर तार, से दुख आगे जे भोग बलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावे साचे। मलार महला तीजा, अष्टपदियां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म हुए ता सतगुर पाईए, बिन कर्म पाया ना जाए, सतगुर मिले कंचन होइए।

हर हर नाम त्याई रहाऊ, हरे अपने पाने से टिपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवार नहार, वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

निज कर होवै वास, जम काल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनास। हर नावै नु सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नजर करे गुर भेटिया, हर नाम वसै मन आए। नानक नामे ही पत उपजै, हर स्यो रहा समाए। मलार महला तीजा, अष्टपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पलर हर नाम।

कमल परगास, तित काट नामै नाम निवास, हऊ मैं भगत करे सब कोई, ना मन पीजै ना सुख होए, कह कह कहण आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुर मन पाए, अन दिन नाम रहे लिव लाए, सद ही नाम वेखह हजूर, गुर कै शब्द रहया भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

सब सुख साचो नाम पौड़ी, आपी ने आप साज आप पछाणिया, अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया, विण थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया, किए रात दिनंत चोज वडाणिया, तीर्थ धर्म विचार नावन कुरबाणिया, तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया, सच्चे तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की पकड़।

वरसै लाए झड़ी नानक पाण चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघ गै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा।

सिफत भंडार उथे हाथ ना अपड़े कूक ना सुनिए पुकार उथे सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा। कलमल होई।

संबाहि जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लहै मलाई दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिलै ना मिलिया जाई आपे जोड़ विछोड़ै।

को जो हर चरनी रहे लिव लाए। ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचों आप गवाई। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक संवाई। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो वई।

वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोलिया बिन तोले पाया ना जाय गुर कै शब्द विचारी है गुण मह रह समाय अपना आप आप तोलसी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाय हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई जगत मुस्से अमृत लुटिया मनमुख बूझ ना पाई बिन नावे नाल ना चलसी जासी जन्म गवाई गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किस ना वसाई सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्या ते खोतरै चढ़ै चवगल वन।

तन तन बहुत उपजै जा सहो करे रजाए जित खादै मन तृप्ति है जिया जुगत समाए।

तू तनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाय।

तीरथ लाया हथी सिर खोहाए ना पद कराया कुचल रह दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पात ना कर

नानक सदा सुहागणी गुर कै हेत अपार महला तीजा सावण दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक पिर की सार ना जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपेहो हठ ना पतीजय एक गावे है राग परियां राग ना पीजय एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजय एक अन ना खाहे मूरख तिना क्या कीजय तृष्णा होई बहुत किवै ना तीजय कर्म बदै कैलो खप मरी जय लाहा नाम संसार अमृत पीजय हर भगती असनेह गुरमुख कीजय सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाई नानक हुक्म ना जापई किथे जाई समाही फसल

भूख सनावे खसमै मूल ना भावे अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा अक डाली बह खाई खसमै भावे ओहो चंगा जे करे खुदाई खुदाई नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमती विचार इक नानूपद एवं भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाई है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेम दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रू वह लिया वह फेर बिन बूझे

जिस भाणा मन वसाई अपने भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिखिया कदे ही रजे नाही मूरख भुख न जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाई जिसनो कृपा करे रजाई सलोक महला पहला शर्म धर्म दोए नानका जे धन पल्ले पाई सो तन मित्र ना कांडी है जित सिर चोटा खाई जिनकै पल्ले धन वसै तिनका नाओ फकीर जिनकै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगै दुख नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लखी भुख रूपी भुख ना उतरै जा देखा ता भुख जेते रस शरीर के तेते लगै दुख महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंधै ताने अंध चिक्कड़ लाया क्या थी है जा टुटै पत्थर बंद बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ नानक सच्चे नाम विण केते डुबे साथ महला पहला लख मन सोयना लख मन रूपा लख साहा सिरसा लख लश्कर लख वाजे नेजे लखी घोड़ी पातशाह जिथे शायर नंगना अगन पानी असगाह।

सच पछाणिए, लिखिया पल्लै पाए सो सच जानिए, हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए, भौजल तारन हार शब्द पछाणिए, चोर जार जुआर पीड़े कहानिए, निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए, गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाऊ चौधरी कूड़ी पूरे थाऊ नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाउ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाऊ फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाऊ सो पढ़िया सो पंडित भी।

कथनाकार सब नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख होए महला पहला।

बुद्धि मिथ्या, बिन सच्चे व्यापार जन्म बिरथया, अंत ना पारावार ना किन्ही पाया, सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया, चले नाम विसार तावन तत्या।

जोड़ बैस नक पकड़ है राती मानस खाने फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे सियो क्या कही है कह ना कहया बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख है जान इस मेला उतै मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जीए लया वसेरा अपाख पक है पाख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही चतर कहावे पांडे मास पराणी मास कतेबी चहो जुग मास कमाणा जज काज व्याह सहावे उतै मास समाणा स्त्री पुरख निपजह मासो पात चाह सुन।

अनक माध कपाह तुयो त्रिपवन गन्ना तुआ आख बो बिदहछा तुए बहुत बेकारा ए तेरा सुछोड़ हो।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मन तवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया फुनक नाम खुदाया पौड़ी नवी महला पंजवा सबो वरतै चलत चलत वखाणिया पार ब्रह्म परमेश्वर गुरमुख जानिया लथे सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार पए निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया आपे बख्श मलाए सद कुर्बाणिया नानक नए मलाए खसमै भाणिया सलोक महला पहला धन सो कागद कलम धन धन भांडा धन मस धन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच महला।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लै, सो नाम त्याई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

गोपाल राय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्र साला सप्त लोक समान पूरी अली जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़ी कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नाख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकटवर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवै हेला एते जी जाचै है करी।

प्रभ स्वामी हम वणजारे रास देन जन नानक को दया प्रभ तारहु लड वाखर हर हर लेन कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभ कृपा करी कृपास अन दिन अंत भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगने आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ए सब ऊच हम नीच बिखियास।

पियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ, नाना रूप रंग हर केरे, घट घट राम रवियो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिख्या के ताक, संत जना की बहुत बहु शोभा, जिन उर तारियो हर रस कर साक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक, हर के संत जना मह हर हर, ते जने उत्तम जनक जनाक, तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुश्की मुश्काक, तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर पाई, मात पिता बंदप हर साक, कानड़ा महला चौथा, मेरे मन हर हर राम नाम जप कीत, हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाऊ, मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया।

ना उतरै कब हूँ। हर हर जाय मिले हर प्रीत, हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत, हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नान

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास

जाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहो बहो विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगादो मत गुरमत हर प्रबलादो तुर हो लिखे ललादो रहाओ बिख माया संच बहु चितै बेकार सुख पाइए हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भये कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति

कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा। हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान। मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ। तेरे जन त्याव है एक मन एक चित, ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान। उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना। गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी। ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर। तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर। जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ। सिमरत नाम मन साधारै होट पराधी खिन महतारै। जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना। जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै। कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया। कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने। उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास।

रसन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोबिंद ते तहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हिरदै बसहि गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

तेरू जन हर जस सुनत उमायो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते सात संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

भाव जल तरना। अपै दान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना। कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया। सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ। नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया। सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया। बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया। साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए। शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ। सगले आस होत पूरन कोट

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नान

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा ताने ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ़ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

देख समानु मुख बकनो मन मान रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास भयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आख पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भये तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए। काटे अज्ञान भरम मोह माया, लियो कंठ लगाए। कानड़ा महला पंजवां, आनंद रंग बनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण अधारे रहा।

काम बढ़ाई। भौजन बिखम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, भयो प्राप्त गुर चरनारे। कहो नानक प्रभ भये कृपाला, मगन भये ही रह दरसारे। कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कह संगे, थोरे काज बुरो कह फेरो रहाओ। नाम बिना जेतो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ केरो, आगे दृष्टि आवत सब प्रगट, हीहा मोहयो परम अंधेरो। अटकेओ सुत बनता संग माया, देव नहार दा तार बसेरो। कहो नानक एकै पार उसो, बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुमरे गाहियो, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मटाहयो, भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाद समाहयो। कौन कह तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहयो। कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरे, बिनसै मोह भरम दुख पीरे रहाओ। सिमरों दिन रहन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन है सुख पाईए, साध जना मिल हर जस गाईए। रहाओ कर कृपा प्रभु हृदय बसेरो, चरण संतन कै माथा मेरो। पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ। करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दुख सगल मल हरसन, पावन धामन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन। शरण गही पूर्ण अबनासी, आन अपाव थकत नहीं करसन। कर गह लिए नानक जने अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा, कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ। अहं मत अन रत कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार बिदहीनत, मम मत मात कोप जरिया। करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उधर सरन परिया। कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाओ। गोविंद त्याग आन लाग है, अमृतो डार भूम पाग है, बिखै रस स्यों असक्त मूडे, काहे सुख मान। काम क्रोध लोभ व्यापेउ, जन्म ही की खान, पतत पावन शरण आयो, उधर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा, अवलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ। चरण कमल हृदय तार, उतरिया दुख मंद, राज धन परवार मेरा, सर्ब सो गोविंद। साध संगम लाभ पायो, नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा, कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रभ पूजो नाम अराध, गुर सतगुर चरणी लाग, हर पाव हो मन आगाद, जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ। अनक पूजा में बहु विद खोजी, सा पूजा जे हर पवास, माटी की एह पुत्री जोरी, क्या एह कर्म कमास।
प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोय ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदारन नाम प्रिय तेरे नव निध नाम निधान हर केरे हर रंग रंग रंग अनुपेरे काहे रे मन मोहे मगनेरे नैन देख साध दरसेरे।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर केरा। कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना। रहाउ आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरस।

पीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अतरहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना भंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर।

आई पतत पावन बिरद स्वामी उदरते हर त्याई रहाओ संसार गार विकार सागर पतत मोह माने अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारो अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इन सियो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख बेहात।

पसेओ ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद भई मिलियो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मलाए साध संगाए कतहु न जाए करह बसाए गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै चरण नभाए आनत जाए थान थनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्व समाई रहाओ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक उपावरी तौ मिलियो जो किरपाई प्रभु दयार किरपार किरपा निध जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद सासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्ब सु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवां करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

कनक कनक पहरे बहु कंगना कापर पांत बनावे गू नाम बिना सब फीक फिकाने जन्म मरे फिर आवे गू माया पटल पटल है पारी कर घूमन घेर कलावे गू पाप बकार मनूर सब पारी दिख दुत्तर तरियो ना जावे गू पऊ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द।

हर हर नाम तरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुर नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हम मैं मल लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करै अभिमानी कड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगता की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या हो कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निःसासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर

जय तालकुंडे गुरियंकस शब्द दरडावैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राख हर लिव लावैगु सतगुर शब्द दे हृदय अंतर मुख अमृत नाम चवावैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिव लावैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावैगु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावैगु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावैगु सुपनंतर संसार सब बाजी।

आई, जतन माया के काम न आई, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सत संग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरह तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सत संग पाईऐ हर त्याईऐ, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपालै, जप तप संयम पूरन कालै, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइयै नित त्याइयै, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चालै, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पालै, मंगल चार चोज अनंदा, कर किरपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

फल फलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याय मन हर दरगाह पावह मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हो मैं चुका गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आई सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमति तुदै नावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख हो मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूए जन्म सब हार गुर टुठे हर चेताया हर नामा हर उरतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावने नित हों मैं होए खुआर जल हस्ती माल नवाली है सिर पी फिर पावे शार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

नाम उपजै तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्लै पाई पौड़ी तुद आपे जगते पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगार।

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो हरि उत्तम हर नाम अमोल जिन त्याया हृदय दिन सरात ते मिले नहीं हर रोल वड भागी संगत मिले गुर सत गुर पूरा बोल सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो जित चूका जम झगड़ चगोल श्लोक महला चौथा हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या तिस फिर मार महला चौथा अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन जे कर दूजा देख दे जन नानक काढ दे चन पौड़ी जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई जी जंत प्रित पाल दा जो करे सो होई मात पिता सुत प्रात मीत तिस बिन नहीं कोई घट घट अंतर राव रहया जपयो हो जन कोई सगल जपो हो गोपाल गुण प्रगट सब लोई श्लोक महला चौथा गुरमुख मिले से सजना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाहे तू लुड लुड दरगह वान्य महला चौथा हर तू है दाता सब सदा सब जी तुम्हारे सब तुदै नो आराध दे दान दे प्यारे हर दाता दातार हाथ कढ़िया मीह उठा संसारी अनजमिया खेती भाओ कर हर नाम समारे जन नानक मंगै दान प्रभ हर नाम अधारे पौड़ी इच्छा मन की पूरी है जपी है सुख सागर हर के चरण आराधी है गुर शब्द रतनागर मिल साधु संग उधार हुए हाटै जम कागर जन्म पदार्थ जीती है जप हर बैरागर सब पवो हो शरण सतगुरु की बिन सह दुख।

तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरों दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिवलाई, सब साकत खोज पया। ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काल मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुर उपदेश हर नाम ते आयु, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी, हम लोचह प्रभ दिखंथे। तुम बड़ दाते जी जीन के, तुम जान हो हम बिरथे। कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे। सब तन मन अर्पो अर्प अरापो, कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा, हम तुष कर कर बरन थे। हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक प्रभ समरथे। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अकथ सुनथई। धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाउ। सो हर हर नाम त्यावै हर जन, जिस बड़ भाग मथई। जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे, तह छूटै नाम त्याए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हो मैं मैल लग थई। गुरतार कृपा हर जल नावाई, सब किल विख पाप गथई। जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई। जह अंती अवसर आए बनत है, तह राखै नाम साथी। जन तेरा जस गावे है हर हर प्रभ, हर जपियो जगन थई। जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुड थई। कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जान। और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहे आए कि तिल नहीं मान रहाउ। और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सब ते ऊच ठाकुर भगवान।

यहाँ की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोह दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

फल दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा साधन लव तन मन।

भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाउ सर्व कार्य सिद्ध भय गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरे आ करूं दिन रहन सेव नानक।

परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ। हर बिन आन न कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान। सर्ब कटां के दाते स्वामी, देहे सो पहरन खान। सुरत मत चतराई।

जुगत अलक सुख, हर भगत लवै ना लावनो, प्रभ दर्स लुभद दास नानक, बहुड़ जोन ना धामनो। कल्याण महला चौथा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रामा राम रामो सुन मन भीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा। गुरमत सहजे पीजै रहाउ, काष्ट मह ज्यों है बै संतर। मत संयम काढ़ कढ़ीजै, राम नाम है जोत सबाई। तत गुरमत काढ़ लीजै, नौ दरवाज नवे दर फीके। रस अमृत दसवें चुईजै, किरपा किरपा किरपा कर प्यारे। गुर शब्दी हर रस पीजै, काया नगर नगर है नीको। विच सौदा हर रस कीजै, रतन लाल अमोल अमोलक। सतगुर सेवा लीजै, सतगुर अगम अगम है ठाकुर। भर सागर भगत करीजै, किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग। एक बूंद नाम मुख दीजै, लालन लाल लाल है रंगन। मन रंगन कौ गुर दीजै, राम राम राम रंग राते। रस रसक घटक नित पीजै, वसुधा सप्त दीप है सागर। कड कंचन काढ़ तरीजै, मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है। हर मांग है हर रस दीजै, साकत नर प्राणी सद भूखे। नित भूखन भूख करीजै, तावत ताए तावह प्रीत माया। लख कोसन को बिथ दीजै, हर हर हर हर हर जन उत्तम। क्या उपमा तिन दीजै, राम नाम तुल और ना उपमा। जन नानक कृपा करीजै, कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर अत फीके। मिल सतगुर पारस कीजै रहाउ, सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है। नित आसा आस करीजै, हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है। मिल दर्शन तृप्त मन तीजै, माया मोह सबल है भारी। मोह कालख दाग लगीजै, मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते। ज्यों मरगाई पंक ना पीजै, चंदन वास पुयंगम वेड़ी। किव मिलिए चंदन लीजै, काड़ खड़ग गुर ज्ञान करारा। बिख छेद छेद रस पीजै, आन आन समदा बहु कीनी। पल बै संतर पसम करीजै, महा उगर पाप साकत नर कीने। मिल साधु लूकी दीजै, साधु साध साध जननी के। जिन अंतर नाम तरीजै, परस न परस भये साधु जन। जन हर भगवान दिखीजै, साकत सूत बहु गुरजी भरिया। क्यों कर तान तनीजै, तंत सूत किस निकसै नाही। साकत संग ना कीजै, सतगुर साध संगत है नीकी। मिल संगत राम रवीजै, अंतर रतन जवे हर मानक। गुर किरपा ते लीजै, मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हु जग थमन को थम दी जय। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रली जय। अति उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परी जय। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मली जय। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दी जय। साधु साध साध मन प्रीतम।

भवन पवे तहुए सब जह साधु चरण तरीजै तज लाज अहंकार सब तजियै मिल साधु संग रहीजै धर्म राय की कान चकावै बिख डुबदा काड कड़ीजै परम सूके बहु उब सुख कही है मिल साधु संग हरीजै ताते बिलम पल ढिल ना कीजै जाए साधु चरण लगीजै राम नाम कीर्तन रत्न वथ हर साधु पास रखीजै जो बचन गुर सत सत कर मानै तिस आगै काड तरीजै संतो सुनो सुनो जन पाई गुर काढी बाहां कुकीजै जे आत्म कौ सुख सुख नित लोड़ो ता सतगुर सरन पवीजै जे वड भाग होए अत नीका ता गुरमत नाम दृढ़ीजै सब माया मोह बिखम जग तरीयै सहजे हर रस पीजै माया माया के जो अधकाई विच माया पचै पचीजै अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार भार लग

जाय। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए। अंधेरे अंधी वापरे सगल लीजे खोए। एहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार। रहाओ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

जित मुख तू सलाही है, तित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू अवर भला सै सार, जित तन नाम ना उपजै से तन होहे खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे, संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध भये उदासी, देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए, तरिय साचा होई,

जल जाय। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुर उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लहै।

जांकी वास बनासपत सौरै तास चरण निवरही है। गुरमुख जी प्राण उपजै गुरमुख सेव कर जाइय गुरमुख नानक सच समाइय गुरमुख निज पद पाइय प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचारै पढ़ पढ़ पावै मान आपा मदे आप परगासिया।

पंच तस कर तावत राखी, चूका मन अभमान, दिष्ट विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर, प्राप्त पाती तान, दूध कर्म संतोख कियो कर, ऐसा मांगो दान। हिमा तीर्ज कर गौ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला, आवत किने ना राखिया,

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख।

ऐ कहावै सोए प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल वधाया पैंदा घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावै बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारी है छूटस साच नाय जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुखमूल गवाया दरगाह मिले सजाए जग खोटो सच निर्मलो

निझर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदे

हो आधार आपे देवै सिरगनहार सच्चा मनाए अपना पाना सोई भगत सुगड़ सुजाना नानक तिस कै सद कुरबाना प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत लिव

हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर किरपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोल है सवरैन समाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग चार है हम बाल रहाओ साकत को दिन रहने अंधारी मोहे फाथे माया जाल। खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुब दे काढ ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक। गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय नाम ना वस्यो तिन सब कारज फीक। जैसे शिंगार करे देह मनुख नाम बिना नकटे नक कीक। घट घट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब महीक। जन नानक को हर कृपा तारी गुर बचन त्यायो करी मीक। प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुखार हर नाम हम कहे। पतत पावन हर नाम त्यायो सब किल विख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बस्यो। मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो। कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे। ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर धरयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर। हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने हियरै। हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पज राम नाम हर निमुखफा। हर हर दान दियो गुरपूरै हर नामा मन तन बसफा रहाउ। काया नगर वसेउ घर मंदर जप सोभा गुरमुख करपफा। हलत पलत जन भए सोहेले मुख उजल गुरमुख तरफा। अनुपव हर हर हर लिव लागी हर उर तारयो गुर निमुख पा। कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पल फा। तुमरे जान तुम ही ते जाने प्रभ जान्यो जन ते मुख पा। हर हर आप धरयो हर जन मह जन नानक हर प्रभ एक फा।
प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कड बहा जप मन राम नाम अर धंबा उपजंप पाए ना पाईए कतहू गुर पूरै हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभाने पुत कलत मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख कूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन भा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुमन भा शका एक प्रभाती बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम।

मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवां बेपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सहजा धरत बर्तन कौ पानी, निमख ना वसार हो सेव हो सारग पानी, मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोग ते रह निरारा, ता तू पावह प्राण पते रहाउ, कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सो हर सेव हो नीता नीत, तहां सखाई जह कोई ना होवे, कोट पराद एक खिन महत होवे।

जो जन राता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के हाँ।

देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

त्याग नाम हर जीदा किस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया हलत पलत जिन गुरह सवारिया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान।

जो तिस पावै सो पल होस, तिस गुर को हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम त्याई, ऐसा गुर पाई है वड भागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए, प्रभाती महला।

गुरपूरा पाइय वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ। पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई। सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार। प्रभाती महला पंजवां गुर पूरा पूरी ताकी कला। गुर का शब्द सदा।

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां पुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाऊ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला।

परगास हर हर जपत पूर्ण भई आस सर्ब कल्याण सुख मन बूठे हर गुण गाए गुरु नानक तूठे प्रभाती महल।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम साध संगत हर मिलै।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाई विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

हंग करन है खसम ना पावे साध बिन नावे होर कमावना फिक्का आवे साध दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बामन रूप बहान क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछान राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणतना गणी हुक्म पछाण बोली भाए सुपाई जो किच वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगध आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अखुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत खोई।

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास। गुरमुख विरला चीने कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई। प्रम प्रम डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटे नाम संभाल। आपे सदे टिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोई। बिन गुर सूजी किसे ना होई, आपे करे करावे सोई।

कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि मैं पूजा, हर रस चाखिया तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास, ज्यो पावै त्यो रखो अरदास, सच जिहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूत

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

जन निर्मल हर कै नाम समाय, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार, हर मंदिर मह मन लोहट है मोहया दूजै पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई, हर मंदिर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होई, प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह, हौ मैं मैल उतार सदा जाग है कर अपना राख है, पंच तस्कर काढ़ मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए, जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ, गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाए, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई, गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार, हौ मैं विच जागरण ना होवई हर

पीड़े विस्ताराते मर जमह होहे खुआर। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटो बल जाओ, तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ। पूरे भाग गुर पाईए उपाय किते ना पाया जाय। सतगुर ते सहज उपजे हो मैं शब्द जलाय। हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग। नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

अटेक एक सकी सिरछा वद पुरख स्वामी रहाउ शालनागन स्यों मेरे टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराई अमृत नाम।

बहुत कर गाली, हम गुर राख लिए कृपाली, काम क्रोध स्यो ठाठ न बनिया, गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया, जह देखो तह महा चंडाल, राख लिए अपने गुर गोपाल, दस नारी मैं करी दोहागन, गुर कहया ए रसै बिखागन, इन संबंधी रसातल जाई, हम गुर राखे हर लिबलाई, अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी, गुर कहया इह मूरख होड़ी।

घर घर कहीं ना पाए, हम गुर राख लिए लिवलाए। इन लोगन स्यो हम भये बैराई, एक ग्रह मह दुए ना खटाई। आए प्रभ पह अंचर लाग, करहुत पावस प्रभ सरबाग।

मेरा प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध महा अहंकारा पूजा करह बहुत विस्तारा कर इशनान तन चक्र बनाए अंतर की माल कब ही ना जाए इत संयम प्रभ किन ही ना पाया भगौती मुद्रा मन मोहया माया रहाउ पाप करह पंचा के बासरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बहुर कमावह हुए नसंक जमपुर बांध खरे कालंक घूंगर बांध बजावह ताला अंतर कपट फिर बेताला वर्मी मारी साप नामुआ प्रभ सब किछ जानै जिन तू किया कुंवर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता देश छोड़ परदेसह ताया पंच चंडाल नाले ले आया कान फराए हराए टूका घर घर मांगै त्रिपतावन ते चूका बनता छोड़ बद नदर पर नारी वेस ना पाईए महा दुखियारी बोले नाही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाईए जोनी अनते रहता दुख देही सहता हुक्म ना बूझे व्यापिया ममता बिन सतगुर किने ना पाई परम गति पूछो सगल बेद सिमरते मनमुख कर्म करे।

आसोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांड लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया।

किस हुआ सो तेरा पाणा, जो इव बूझै सो सहज समाणा। कहत कबीर किल बिक गए खीना, मन भया जग जीवन लीना। प्रभाति अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। हिंदू मूरत नाम निवासी, दोहो मह तत ना हेरा। अल्लाह राम जीवो तेरे नाई, तू कर मेहरामत साई रहाउ। दक्षण देश हरी का बासा, पश्चिम अलह मकामा।

माहे निदाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाउ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

मन का भ्रम ना जाई रहा। पकर जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

हुक्म है आपे निर्भव समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकि अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म।

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक।

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलं तस्य जन्म स्य जावद ब्रह्म न बिंदते सागरं संसार स्य गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वास है जिन काल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रि शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेहे सो परसन माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं हर

वर्तंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत् ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य वैश्वान्तर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधनं ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पस्मं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निरतनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करना मय घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचलते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते दृता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यति सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान।

मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमरता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोध पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन कर

प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है। कुकर है सुकर है गर्दभ बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण है कीर्तनंग साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है। नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता विलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग।

प्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टा सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं कै पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बावन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सरूत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं।

रमन सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल

अनक माया बस्तीर नह आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर राध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरु हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करु शरीर स्वस्थ खीन समय

मित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वत्सल अनाथ नाथी,

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा

श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदयं अच्युत बजंत नानक बड़ भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियाल खर है विखम स्थान मन मोह मद्रं महा असाध पंच तस्कर है हीत मोह पै परम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगले अहं रोग खंडन।

चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंग ता मेरंग सहकंग ता हरियंग बूडंग ता तरियंग ऊनंग ता परियंग अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरण बहु विघ्न करण उच्चरण सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म

परहारन है बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन है पत्थर पुरजीण चढ़ियू नह जड़ियू पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी भावनी साध संगेन लभंतंग बड भागन है हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नह व्यापण।

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोबिंद है नानक लब्धिहंग बड़ भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार।

कसो वरंगण है। रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया। मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहां। हरपी सब सिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है। हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया। सोलह किए श्रृंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है। हर हां कंत बाज श्रृंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे। तिस बनिया हब श्रृंगार साई सुहागणे। हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया। हर हां जा घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया। सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया। हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया। दुत्तर

हाथ पदम आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासों संग गोपाल सगल सुख रास हर हरे हां रिद सिद्ध नव निद बस है जिस सदा कर पार त्रय रावण जाहे से ता लाजी है नित प्रत हिरह पर दर्ब छिदर कत ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हरे हां सुनते पये पनीत पार ब्रह्म बीचारई ऊपर बने आकाश तले तार सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख को जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईए हरे हां जे मस्तक होवे भाग ता दर्स समाईए दिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बधातै ता तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप राम दास पुर हरे हां नानक कसमल जाहि नाया राम दास सार चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसे कहो आहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारनी हरे हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहार ने मित का चित अनूप मरम ना जानी है गाहक गुणी अपार सोता।

वह सच धना सुपन उभी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदां संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे।

की दम के हो होती साट रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भंवर रहे लपटाए जप तप

आहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहु जाहे। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल। नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार। मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग। प्रगट भयो सब

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छास पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हे अवतार, जिन बुलोया

की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोई, ऐसे मरने जो मरे बहुर।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर शतर तर ते फुन तरनी गाड कबीर गर्ब ना कीजिए ऊंचा देख आवास आज

अजो सोना उस मंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग। आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाहेंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो।

कोय सांझा करे कबीर सिंह हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाय पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाय कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

छोड़ै जल माछुली चीवर मेले ओ जाल ए तोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

वैष्णव की कुकर भली साकत की बुरी माए। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

शरीर बिन हर भगत ना मुक्त होए त्यों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर

उत्तम पये लोहो काठ निर्गंध कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओहो नहीं सहया जाए एक जो साधु मोहे मिलियो इन लिया अंचल लाए कबीर बैद कह हो ही भला

या कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाए, कबीर ऐसा को नहीं

सती पकार चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए कबीर जा को खोजते पायो सोई ठोर सोई फिर कह तू पया जा को कह पाय और कबीर मारी मरो पसंग की।

आए, जिन हर का नाम ना चेतेओ, बाद है जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास, नरक पर है ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते

जौ की भूसी खाओ होन हार सो होए है साकत संग ना जाओ कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत साकत कारी कांबरी तोए हुए ना सेत कबीर मन मुंडिया नहीं

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

आए जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोय पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधे हो जे

ऐसे बच रह कूंज मन माया ममतारे कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल चातरक ज्यों।

आग कबीर संत की गैल ना छोड़ी है मार्ग लागा जा देखत ही पनीत होए पीटत जपिए नाम कबीर साकत संग ना कीजिए दूर है।

स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार इस

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परे ओकट।

हम कबीर साकत ते सूकर भला राखे आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

आर बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का ताजमान का अपमान, ऐसा कोई दास हुए

होए ऊच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए कबीर पाटन ते उजर भला राम।

आए, मान मुनि मुनिवर गले, मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो बाह आएक, लागत ही पुए मिल गया, पर्या कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है, जो सिखा महचूक, अंधे एक ना लागई, ज्यो बांस बजाई है फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन, छत्रपति की नार, ताश पतंत्र ना पुज्जै,

तै हाथ जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साट। कबीर काम परे हर सिमरी है ऐसा सिमर हो नित, अमरापुर बासा करहु हर गया बोहर बेत। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जेहे मार्ग पंडित गए पाचे परी बहीर, एक अवघट घाटी राम की एह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किस का लाज सी

असंत मने आगर कोई अंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कै जाने आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिसा गई सब भूल।

के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बिचार कह संत।

पास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत।

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतक हार कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया

मारह जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल कबीर जोर किया सो जुल्म है।

दास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बैसह गाए धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाए महला पंजवां कबीर चावल कारनी तुख को मोहली लाए संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाए लै।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाही है जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेउ फिरया लालच माहे पाप करम ता

लोहिन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाही आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारो बे दोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर,

काची सरसों पेल के ना खाल पई ना तेल, टूंडत ढोल है अंधगत हर चीनत ना ही संत, कह नामा क्यों पाईए बिन भगत हो भगवंत, हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, हे नर दोजक जाहेंगे सत पाख है रविदास, कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करह ताको बड़ो अपाग। श्लोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जित दिहाड़ धन वरी।

किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे फरीदा इनी निकी जंगी है फल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थे ओम फरीदा राती वड्डिया धुख धुख उठन पास एक तिना दा जीविया जिन्ना वडाणी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्तां आड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़ै दाख बजौरियां।

तीकंत सिंह अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढोई ना लह पेय नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई धन

की जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल एहो नदोषा मारिया हम दोषा दा क्या हाल कड़िए कड़िए मारिया।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मर्ग सपाणी चित धार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवेसानू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनाही।

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदरे पया लोक बडारन जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चलसी।

आस फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी सम...

पंजे वक्त मसीत उठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवे

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण हो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवां फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौहणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडिए सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैण मिंदरावले तिन्ना मिलन कुआओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग। महला पंजवां फरीदा भूम रंगावली

सो सजन वीही एक टोंडेंदी नालाहा तुखां ज्यों मालीही कारण तिना मां फिरी फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखी है कौन कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखिया नहीं बहन जो जो मंजै दिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां कुंडह काग अजय सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग कागा क्रंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरै मेरा सहो वसै मास ना तिदू खाहे फरीदा गोर नमाणी सड करे ने करे।

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे

बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वासिया भी कंत मत हुंदी होए क्याणा ताण हुंदे होए नताणा अण हुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रब तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक है सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलाखे अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार।

अपकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुम्ह मलासी तन तन ते तन जन जेह कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब

आप अपुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम न पवै अमुलो जेहे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक।

पव जल तरना, बिनत करो अरदास, सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाऊ, भगत एहो मन ठहरावे, बलिओ चिराग अंधियार मह, सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर पवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप ता स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

ज्ञान हे भगवंत कृपा करतारहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बेदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर

आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु भांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंध है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

गिर दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल

आद सदाधिक मन जन गावह अशल छला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फरमायो गुण गावै रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावह समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज आत्म रंग माणै जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जानै सुख देव प्रीख्यत गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो गुण गावह पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारय ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारिय ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायो।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोग मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर।

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवे सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्ब सिद्धि कावजन कल सुबुद्धि कीर्त जन अम

पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाज समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभूह समुद्धरे पायो नाम निवास सक्यात जन्म कल उचरै गुर परसेओ अमर परगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख मुख।

अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सचो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रै हाथ ता पर सके अत हाथ लगे है गुर अमर पै जी ता पर सके अत जी गुर अमर पणिजै नैन ता पर सके अत नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अत श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पेत सक्यात सो

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक बिन दुग

सो दृढ़ नानक संग रहियो ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल उधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उभर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल अवत

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुरु देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म।

साध सलाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच

इव जोद कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करहे लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी।

हारियो दुख पंजन आत्म पर बोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहु मुफुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नव निध नाम निदान रिध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर बास।

गुर पायो तिन सकी अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै इहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मात्र जा कौ दृष्ट तारै, शब्द रिद बीचारै, काम क्रोध खोए जियो, जियन सभन दाता अगम ज्ञान

पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो है जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे हैं।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कवल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास राड़।

यो सुर नर सप्त समुंदर के धारे उतरे भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए।

गुर कर शब्द सुपुन अगन कट है सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखो न हो कियो ते अकियत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान।

भूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन अहन सरसै सत कर जानी ओह कुन प्रेम रंग पाई गुरमुख है त्याई है अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओहो बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उदरहो द्वार हर मानी ओहो ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुगद मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है।

जी धारुहु मानस जन्म देह निस्तारुहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म।

नाम अखै निध अपियो, अपियो हर नाम अखै निध चहु जुग, गुर सेवा कर फल लहियन, बंद है जो चरण सरण सुख पाव है, परमानंद गुरमुख कहियन, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण भरन, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारन तरन, जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है, कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल, गुरदर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुरदर्शन, परसन परम पवित्र गति, जीता है जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन शिव गुर ज्ञान रते, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार, मुन बंश है जाकी सरनं, सतगुर गुर सेव अलग।

जग जन्म मरण भगा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई। तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अवलोकया ब्रह्म भरम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी। श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै। एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभात है कर है स्नान, स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं। कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं। सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन। जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मह। जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

यो देख रूप अत अनूप मोह महामग पहि किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सर्वर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

संभाल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो देव जीर बड़े तीर तर्म अंग अलाके अगम खेल किया अपने उशाहे दियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुतह सिद्ध रूप धरयो साहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

मूर्त दमन सकल पवन कुशल कर्ण सर्वभूत आप ही दिवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जन्म कर्म माच

ज्ञान सच ज्ञान मंत्र इह निस बासर हुए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तो हो मैं का फंद काट

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर

दूर कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, कबहू का को पावै आत्म परगास को। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको, शिव मन गह नात जात कबलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतरगत, तेज पुंज तिहों लोग परगासे। देखत दर्स भटक भ्रम भजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा अत लुभित, अल समूह ज्यो कुसुम सुबासे। विदह मान गुर आप थप्यो थिर।

आस जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणंग इनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनंग बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणंग कर्म कर तू दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अम

पिखत अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानियो तीनी भगत प्रेम लिवलाई तांते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत की नीम रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी।

प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत।

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगम निग

पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटै गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल

पछतायु तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायु जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयु काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदारन बस है संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई

किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंड ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण अपार पहला।

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए

ढंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जिस सतगुरु

नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अग्न मरे जल लोड़ लहो विण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद

कबला कबला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा जै सेती मेरा संग जित डिठै तन पर फुड़ै चढ़ै चवगण वन रज ना कोई जीवया पहुंच ना चलिया कोय ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए सरफै सरफै सदा सदा एवं गई विहाय नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाए दोष ना दे राए नो मत चले जा बुढ़ा होवै गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोवै पूरे का किया सब किश पूरा घट वद किश नाही नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही। सलोक महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अभ्यागत एह ना आखी है जिनके मन में

ठग मनमुख बन चलाई है ना मिलही वग सग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर पाए साला ही सालाहना ही सच्चा साला ही।

ज्ञान खड़क पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल।

आई। मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई। जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई, पुत कलात्म हो।

अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन ना करहे विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा, हौ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ता का दास। माया पोयंगम सर्प है।

जग घेरिया बिख माए बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिन को पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्मल होया बिख हऊ मैं गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उजले हर दरगाह सुबा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चल है सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिब लाए।

पूत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख किरपा धारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक तिस बलिहार नै जो सतगुर लागे पाय नाम लगे से उबरे बिन नामे जमपुर जाहे नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताहे चिंता तावत रह गए ता मन भया आनंद गुर प्रसादी बुझी सा तन सुती निचिंद जिन को पूर्व

सब देखिया ब्रह्म सोपाय, नानक सतगुर बोहित है वडभागी चढ़े, ते भौजन पार लंघाय, बिन सतगुर दा

या अंतर अज्ञान गुबार, तब नर सुता जागया, सिर डांड लगा बहु पार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया, से पाइन मोख द्वार, नानक आप उहे उदरे, सब कुटंब तरे परवार, शब्द मरे सो मुआ जापे, गुर प्रसादी हर रस त्रापे, हर दरगह गुर शब्द सिंगापे, बिन शब्द मुआ है सब कोई, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवहै। अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै। दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया। सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है। जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाम दे। सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले। गुर कै शब्द सुभाई ओना मैल पतंग ना लगई। जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ ना उतरै। जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन। गुर कै अंक समाय बुरा करे सो केहा सिजै। अपने रोहे आपे ही दज्जै। मनमुख कमला रगड़ै लुजै। गुरमुख होए इस सब किस सुजै। नानक गुरमुख मन स्यों लुजै। जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवेओ शब्द ना की तो विचार। ओए मानस जू

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटिय है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया

भाई अपनी पत के साद आपे खाई किसका क्या सलाही है भाई दर्शन को बल जाई सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई कर्म मिले ता पाई एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फराए संगत ढोई ना मिले भाई बैसन मिले ना खाऊं नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिन्ना तुरे कमाया नाम तिन विट हो हों वारिया भाई तिन कौ सद बलिहार जाऊं से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन अनदिन सेवन गुर अपना अनदिर अनदिर हन नानक से मुह सोहणे सच्चै दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोल है सच कमाहे सच्चा शब्द मन वसिया सतगुर माहे समाहे सच्ची रासी सच धन उत्तम पदवी पाहे सच सुन है सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगाह बैसना सच्चे माहे समाहे नानक बिन सतगुर सच ना पाईऐ मन मुख भूले जाहे बाबीहा प्रियो प्रियो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुकै सहज उपजै चुकै कूक पुकार नानक गुरमुख शाह।

बूंद पवै सहज सुभाई जल ही ते सब उपजै बिन जल प्यास ना जाई नानक हर जल जिन पिया तिस भूख ना लागै आई बाबी हा तू सहज बोल सच्चै शब्द सुभाई सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाई आप पछाण है प्रीतम मिले वुठा शह पर लाई चिम चिम अमृत वरसदा तिस ना भुख सब जाई कूक पुकार ना हो गई ज्योति ज्योत मिलाई नानक सुख समन सुहागनी सच्चै नाम समाई तुरों खसम भेजिया।

आस सतगुर मिलिया जल पाईऐ चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै नामड़ा लइए किस नाओ

बोलना बुझ ना सका कार वण तिण त्रे पवन तुझै त्याएं अन दिन सदा विहान बिन सतगुर किनै।

योग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे भवह वेद पढ़ह युग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मूख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर।

नानक सतगुरु वाह वाह जिसके नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूरन पर

जिसे आपणी तिस लाए हेत प्यार सतगुर की सेवा लगियां भौजल तरै संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार मनमुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए पुत कलत कुटंब है माया मोह वधाए।

हुक्म अरादि हुक्मे समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया फल पाए सदा सुहागण।

आय मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी नित हो मैं कर्म कमाय वर्त नेम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाय अंतरोह कुशुद्ध माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उडाय जिन उपाय तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करतै पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत भई मन मानिया अन दिन सेवा करत समाए अंतर सतगुर गुरु सब पूजे

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग नाल

आए जम्मन मरन ना चुकई हो मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरै नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो पौजल।

त्याग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एहो राग जामू एक ता लख तौ जिती पिन्नड़े दर कितड़े बामण बिरथा गयो जनम।

नाम कहर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर पज मना जेह बिद जल कौ मीन बिखियन स्यों काहे रचियो

नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हरे।

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मित्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज माना निरपै पावह बास जतन बहुत मैं कर रहे हो मिटे ना मन को मान दुर्मत स्यो

है पाई चितवत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए।

नानक थिर नहीं कोई, जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे।

ओदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पतमंजरी टोडी कही अलाप काम

असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मोह।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक।

ते सूचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगह जोध अपार।

हम कीरे किरम सतगुर शरणाई तर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मुख औ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई।

मिले तब तस मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर्ष नाम न पाया ते पाहीन जमपास, जो सदगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सदगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास, तन तन सत संगत जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित्त वह उद्यम, जा आहार हर जीव परया

तिनका पौ सब गुआसी, जिन सेवा मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर न कोई।

तोदे आपे सिरठ सब उपाई जी, तोदे आपे सिरठ सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा मोहल्ला चौथा, तू करता सत्यार मेंढा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लद्दा मन मुकवाया, तू आप छोड़िया आप मिला।

आओ सहस्ताव नयन नान नयन है तो कौ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध इव चलत मोही सामय जोत जोत है सोए हिद चानन सामय चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जुत भावे सु आरती होए हर चरण कामल मकरंद लोभत मनो आनंद।

क्रोध नगर बो परया मिल साधु खंड लखंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा।

मद देख पूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पौन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस घोड़े रस जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया परवान फिका बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खेलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौ।

आओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए खोटा वणज वणजे मंतन खोटा होए पाही फाते मिर्ग ज्यो दू कणोन तरोए खोटे पोते ना पवे इन हर गुर दर्शना होए खोटे जात ना पात है खोड ना सीज सकोए खोटे खोड कमावना आए गया पद खोए नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा हर जप लहा अगला निरपो हर मन माहा त्री राग मखला पहला कर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा नाठिये रे दिन चार पबन के रे पज्यो टाल टुल जुमन हार रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नौ हुला दिन थोड़े थके।

पद निर्वाणी काहे गर्भ समूढ़े माया पेत सुतो सगल काल तरुमाता तेरे होए ना अंत सखाया रहाओ विखे विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्म होए ते आई जब तब संजम होए जब राखे कमल बिकसे मद आश्रम आई बीस सवतारो बासुरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सार है दस अठार में।

ते से निर्मले हौ सदबरे हारे जास हृदय जिन के हर वसे तेत कट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरमुख रहे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट बसे भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखे सदा हदूर जेन गुण तेन सद मन वसे अवगुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया घर सोए अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओ सदा

पद गवाई, सतगुर सेव सदा सो पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जात सात ताप पवित्र शरीरा, हर घर मन वसाए, सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सो पाए, जो सतगुर की शरणागति, हों तिन कै बल जाओ, दर सच्चै सच्ची वडियाई,

अमृत सत्या नामक है, तैना कशु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

अंतर तेरे हर बसे, गुर सेवा सो पाए अरहाओ। सच बाणी सच शब्द है, क्या सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे हम में क्रोध निवार। मन निर्मल नाम त्याई है, ता पाए मोख द्वार, हम में विच जग बिरसदा मर जम्मे आवे जाए। मन मु शब्द ना जाननी जसन पद गवाए, गुर सेवा ना पाई है सच्चे रहे सुमाए। शब्द मने गुर पाई है विचों आप गवाए, अनदन पगत करे सदा साचे की लिवलाए। नाम पदार्थ मन वसया नानक सह सुमाए, श्री राग महला तीजा जिन्नी पुरखी सदगुरना सेवयो, से दुखिए जुग चार। कर हुंदा पुरख ना पछाणिया अभमान मुठे अहंकार, सदगुरु क्या फिटकया मंग थके संसार। सच्चा शब्द ना सेवयो अब काज सवारण हार, मन मेरे सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हर शब्द रहा परपूर। अरहाओ सच सलाहन से।

चौजुगी सट्टो सत्य सुनाए, होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए। इनको मैल खदूर है जो सत्य रखे लिवलाए, नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाए। पूरे भाग सत संगत लहे सगुर पेटे च से आए, अनदिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए, श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन। जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुण सार दुबदा मैल चुकाइन। हर राख्या उर तार सच्ची बाणी सचमान, सच्चे नाल प्यार मन मेरे होमे मैल पर नाल। हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार, हरहाओ सच्चे शब्द मन मोया प्रभ आपे लहे मिलाए। अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सदगुर बूझ न पाए। जिनको पूर्व लिखया सदगुर भेटिया तिने आए, विण नावे सब डूमणी दूजे पाए खुवाए। तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए, परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए। नदर करे प्रवे अपनी आपे लहे मिलाए, सबके सुनदा वेखदा त्यो मुकर पे आ जाए। पापो पाप कमाउन दे पापे पजे पचाए, तो प्रणदर न आवई मन मुख बूझ न पाए। जिस वेखा ले सो ही वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई, होमे पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन वसे नामे रहे सुमाए, गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्दे परम पुराए। मान रे निकरवासा होए, राम नाम सालाए तू फिर आमन जान न होए। अरहाओ हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर न कोए, शब्द सलाही मन वसे सहजे ही सुख होए। सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तय दे, होमे सबा गणत है गणते नु सुख नाहे। बेकी कार कुमावनी बेखी माए सुमाहे, बिन नावे ठौर ना पायनी जंपर दूप सहाहे। जियो पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार, गुर प्रसादी बुझिए ता पाए मोह द्वार। नानक नाम सलाहे तू अंत न पारा वार, श्री राग महला तीजा तिना आनंद सदा सुख है। जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार, कृपा करके अपनी देतोन भगत भंडार।

तास लह महल हरहाव अवगुणवंती गुण को नहीं बैण न मिले हदूर मनमुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रादूर जिन्नी सच पछाणिया सचरते परपूर गुर शब्दी मन बिद्या पर मिलया आप हदूर आपे रंगन रंगयोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग न उतरे जो सचरते लवलाए प्यारे कुंडा पवत के मनमुख बूझ न पाए जे सतगुर मिले सो मिले

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से राम विछड़ है, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा, अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जा आपे नदर करे, छे जन शब्द सोने तिस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते आव मेले करतार, गुरमति सच सलाना जेदा अंत न पारावार, धड़कड़े आपे हुमस हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हौमे विचों कोय, सातन नावे बारी अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच

तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग मोहल्ला पंजवां। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया एक सिउ लिवलाए। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखे आपाए। गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन गुर शब्द

संग सुमाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेस सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कह।

बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते होए विनाश हरहाओ। साहिब मेरा निर्मल इस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालियां सह बिन अवर ना जाए, इस आग

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए एना, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, दूते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तुम वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

आओ। सर्ज गबादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हों तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार, सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे

अवे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एको रब रहा दूजा अवर न कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधक नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगती पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाण।

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरमिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बनबाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बाद सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सजानी है पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार। एक तागे राल मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल न तोलिए कस न पाया जाए, वाह पारी बन जा रहा आए वजो लखाए। तारक मावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरह जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कसने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है बिन घर भगत प्यार।

राम नाम मन विद्या गुर दिया सदान मरण बुद्धि केतिया केते वेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सच्चो ओर है सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखी है नीच न दिसे कोए एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए कर मिले सच पाई है दुर्बक्ष न मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख से गुर पाए अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महेश माए ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए काड़कड़ वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुखाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

ना पौड़ी तित तास, गुरमुख अंतर जानिया गुर मिलनी तरियास। पाई रे भवजल बिगम डराओ, पूरा सतगुरु रस मिले गुर तारे हरनाओ हरहाओ। चला चला जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार। ही सच्चा सराहना सच्चे थान प्यार, दार कर महिला सोने पक्के कोड़ हजार। हस्ती कोड़े पखरे लश्कर लाखे पार, इस ही नाल न चलिया खब खमुए असार। सोई ना रुपा

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार तार कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मई अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख असमार तरती चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदिया श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, दूजे पाए पढ़ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई, जो सच्चे लाए से सच लगे, नित सच्ची कार कराना, तिन्ना ने करवासा पाया सच्चे मैल रहन। नानक भगत सुगिए सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग मोहल्ला पंजवा, जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोए ना दे, लागू होए दुश्मना, साग पे पज खले, सबो पजे आसरा, चुके सब असराओ, के त्यावे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाओ। साहेब निताणिया का तान, आए ना जाई थिर सदा,

तेरे अंतर शब्द बसाया सईयां से सोहागनी जिन से नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया इन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ए करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा।

जियो तू सबना माए सुमाया इन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए करमस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सबक जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कै रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंतन प्रभु ते आया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

विसर गया ध्यान तीजे पैरे रैण कै बन जा रहा मित्रा धन जोबन स्यों चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बदा छुट है जित हर का नाम न चेते प्राणी बिकल पया संग माया तन स्यों रत्ता जोबन मत्ता

जो जुगे जुगो तद पीढ़ी गुरु चलंदी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुगंधी, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिलतन वेल बधंदी, श्री राग महला पंजवा, शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा, हर निभगे तेरे नाले, संग सगाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमल चित लाए, जल तल पूर है आपन वारी, काट काट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले, मन प्यारे जी मित्रा, हर बिन चूड पसारे, मन प्यारे जियो मित्रा, बिगसागर संसारे, चरण कमन कर भोयत करते, सहसा दुख न व्यापे, और पूरा पेटे वड़ भागी,

ब्रह्म विचारया जन्म सवारया पूर्ण कृपा तब करी कर गै लीने हर जसो दीने जोन ना तावे नै मरी सत गुरदयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ सुवामी।

नामक जिन श्रेया सब कोय जियो फारजी सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोए तो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोह माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम ते

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक मोहला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम हुणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया।

जननी जानत सुद बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अधिक लागत तार, पेगत ही जाम राव हसे, ऐसा तय जग परमलाया, ऐसे बूझे जम होया गय माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखया रस, इत संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत पावे ता लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण ता खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन अग लड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं लेह छड़ाए रहाव, अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सुनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तरमराओ, तय करदल करन महाबली, दिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वाण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पवन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलस एक पाया, जमें तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

मेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निभ निभ लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभु तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंट साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांद पई बुझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुख दाता दुख पंजन खारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नू आप प्रतपाले

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावन यहाँ रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए ताप राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा।

अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभु कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन ससदा सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अनजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहण ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जी वे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसरे सो हरिया हो वे जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर है जप जप जीवान आओ कर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिए नान क्यों सुआओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद हरड़ा सुया की तुनी।

हर बोर सुख पावे, फिर संचे हटवाणिया बेहाड कुमाए, वो चूड़ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जान हर तन संचया हर खर्च ले जाए, त्यों माया मोह कुटंब है।

तिस गुर मिल उदरै हर गुण गावाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रव की हो गोली। जब हम हर सेती मन मान्या कर दीनो जगत सब गोल अमोली। अरहाओ करो विवेक संत जन पाई खुज हिरदे देख टंडोली। हर घर रूप सब जोश सबाई हर निटवसे हर कोली। हर घर निटवसे सब जाके अपरंपर पुरख अतोली। हर घर प्रट कियो गुरपूर है सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड़ पुरख वडोली। जन नानक अनदिन घर गुण गावे मेले सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। तित मार्ग हम जाते आराम मेरा मान हर से तीराते। सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते। रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते। जिनके पाव दो सा बिनसे जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते। दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप रा ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीवे हर जपिए हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जी मन दाते। मेरा मन हर सेती राते सतगुर बचन दियो अत निर्मल। जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे। हे काल के मुख जग सब गरसया कुर सतगुर के बचन हर हम बाचे। रहाओ जिनको प्रीत नहीं हर सेती ते सागत मूड़ न रकाचे। तिनको जन्म मरण अद पारी विच विचता मर मर पाचे। तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास हम कीजे हम नृत करे कर नाचे। आपे सावडे प्रस्वामी हम वन जारे है ताचे। मेरा मन तन जियो राज सब तेरी जन नानक के सा प्रसाचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे काने। जेते तुम्हार जाने स्वामी तो सदगुर मेर मेरा प्राणे। राम हम सदगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते। गुर सदगुर के बचन हर हम जाने। रखाओ जितने रस अन रस हम देखे तब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चखिया मिल सदगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सदगुर नहीं पेटिया ते सागत मूढ़ देवाने। तिनके कर्महीन थुर पाए देख दीप कमोए पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर घर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जा प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन तो प्रसदा ना लगे स्वामी। तो किथे हर पौ नसीए हर आपे बख्स लए पर साचा। हर आप छुड़ाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सदगुर की शरणाई भजको मेरे मना गुर सदगुर पीछे छुटिए। रहाओ मेरे मन सेवो सो पर सर्व सुखदाता जित सेवे निज कर वसीए। गुरमुख जाए लहु कर अपना तस चंदन हर जस तसीए। मेरे मन हर घर हर घर हर जस उत्तम लै लह हर मन हसीए। हर आप दया कर देवे ता अमृत हर हस चखीए। मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटीए। ते सागत चोर जिन्ना नाम सारिया मन तिन के निट ना पिटीए। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटीए।

जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदिन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदिन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायन जेवा हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे। कोई करे उपाप अनेक भो तेरे बिन कृपा नाम न पावे। जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम करामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा। वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड़भागी मिल सूड सुजानी जियो। मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामन करीहा जियो। मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो। पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो। हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो। मेरे मंत्र प्रेम लगा हर टोले जियो। मैं मेले मित्र

चख सार जागत होए रहे बिस्मार अमर करुणा पियो प्यारी हे रसराती होए तृप्तारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हार हर हर त्याओ आन सुनिए कत हूं जाइये साध संगत बड़ भागी पाईये आड़ पर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाध ईगा उमा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली अनंत मोली फल फुल पेडे इरस राती बौर न छोडे आन रस कस लवे न लाई कहो नानक पुर पय है सखाई गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा मन मंदिर तन सजी बार इसी मध्य बस्ते पार इसी पीतर सुनीत साहो तन व्यापारी जाका उआ विसाहो नाम रतन को ब्योहारी अमृत

कौन सो जान जो सौदा जोर है, मैल सा का किन बिद पावे, कौन सो बिद जिद पीतर बुलावे, तू वट साहो जाके कूड़बन जारे, कौन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत ने कर पाया, अमोर रतन साध खलाया, हर कृपा जामे ले साहे, कहो नानक गुर के वे साहे, गौड़ी महला पंजवा गुवारे री, रैन दिस रहे करंगा, प्रभु को जाने सदकी संगा, ठाकर नाम की उनवर्तन, तृप्त अगामन घर के दर्शन, हर संग राते मंतन घरे, गुरपूरे की सरणी परे रखाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहारे आज्ञाकार, एको बनज एको व्योहारी, अवर न जाने बिन निरंकारी, हर्ग शोक दुहू ते मुक्ते, स अलिप्त जो घर जूते, जिसे सब में सबते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान तरते, संतन की महिमा का मनवखानो,

तू है मेरा गहना, तुझ निपुन जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवरे तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सागुर ते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याद हस्त कोड़े आर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सी गार, पंच दूत व्याप्त अंधहार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां ब्या पे माए। ओ नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्त को अपनी लय रघाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर ना जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व स्याणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्ट वस होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। तंतन तूर सर्बन धान, साध पूजनी सदगुर संग।

मिटे कलेश सुखी हो रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतरजामी, समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समरथ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा। माधव जाको है आज तुम्हारी, ताको

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जड़ का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिमला।

प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पनवा खांदा पैन दामू कर पाए तिसनु जो है तू तरमराए तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना और जन्म परमे बोजू न रहाओ सागत की ऐसी है रीत चूझ करे सगल विपरीत जियो प्राण जन मन तन थारिया सो ई ठाकर मनो बसारिया बधे विकार लिखे बोकागर नानक उधर कृपा सुबसा।

सोपाया मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम हस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना चूरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी जिया कोत न संगे प्राणी।

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर संगराते पाए ना जले, हर संगराते माया नहीं चले, हर संगराते नहीं डूबे जला, हर संगराते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संगराते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

कवन गुण प्राण पद मिलो मेरी माई। रहाओ रूप हीन बुद्ध बलहीनी, मोए परदेसन दूर ते आई। नाहिन दर्बन जो बन माती, मोए नाद की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्राप्त दर्शन कहो फिर तसाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साह संग मेरी जल बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। पाए लगो मुझे करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी। रखाओ मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मुझे सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरो पिछे वैरागी। पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर।

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर उजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुख ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, नाकश आवत नाकश जावत, तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मखला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताकी ओढ़ भी जय रे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम ज पी जय रे रघाओ मन की मत त्यागो हर जन हुगम बुझ सुख पाइये रे तो प्रभ करे सोई परमानो सुगद ओई त्याये रे ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे दीन दर्द पंजन स्वामी जे पावित से निवाजे रे सबको माउ पिता प्रतपाल जी प्राण सुख सागर रे तेंदे तोड़ नहीं करते पूरे और तनागर रे जाग जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हर घर कबू ना मनो विसारे ईगा उवा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रखाओ महा कट काटे पीतर रसना नाम पितारे शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक ते रख हजल पारे उतारे चरण कम आरा तुम मन में जमकी त्रास बिदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे गुण गावत त्यात सुख सागर युए जन्म नगारे ताम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बरहारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन औरतने मूर्ख सा संगत जप एखे ना रहाओ सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग हैवर गैबर राज रंग जा चलो गए मूड रंग चूवा चंदन दे पूलिया सो तन थर संग रूलिया मोए मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मान कर तर बेहर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोध पार ग्राम नो रखाओ कल कालक अंधेहारिया गुर ज्ञान दीप उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जब जब हर गुनी मतवारो माया सोया गुर पेड़ प्रम पोखोया कहो नानक एक तिहाया कालकड़ नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा तारी गुरे टेक रखाओ अंग जुत नहीं पाया गुर चा कर ले लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बगसी बजो मिल एक नाम सोग सहज आनंद विश्राम प्रवके चाकर से पले नानक तेन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जीरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नो तिन मैं पोहे जाम का रखाओ अवर जतन नहीं पाई है वडे पा घर त्याई है लाख इकमती जानिए आगे तिल नहीं मानिए अंग बुद कर्म कुमामने ग्रेबालू नीर बहामने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नाम हो नाम साहब को प्राण अधरिया रहाओ करन करावन तुई एक जी जंद की तुई टेक राज प्रा तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी ईगा ऊगा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रसुजान नांग तकिया तुई तान गौड़ी महला पंजवा हर घर हर आरा दिए संत संघर मन मसे पर मोह पो सदिये रहाओ वेद पुराण सिमरत पने ता ऊच ब्राजत जन सुने सगल स्थान पे पीत चीन राम सेव कह रहत कीन।

कामर गाओ कटके तेरा अंग रोग तू गुर प्रसाद कारा जोग हर जन जन चाखया ताकि तिस ना लाथिया हर विश्राम पाया तो बौर नकद ही ताया हर घर नाम जाको गुरदिया नानक ताका पौ गया गौड़ी महला पंजवा जाको बिसरे राम नाम ताऊ को पीर सा संत मिलहारा से गुणी गहीर रखाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके करतुल नवन सिद्ध जो जाने घर प्रवतनी किश नाही ताके कमी करने घर पछानिया सर्व सुहरंग माणिया हरतन जाके गृह बसे कहो नानक तिन संग दुख नस गौड़ी महला पंजवा गड़बड़ो मूल इतनो रह नहीं गो कितनो रहाओ बे बरचित बे संतना वाऊ सो रेहतनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वसले जितनो हरन परन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नान उदरे सा संग कृपा निध मै दितनो गौड़ी महला पंजवा मुए दासरो ठाकुर को आन प्रोका खाना रहाओ ऐसो हैरे खसु हमारा किन में सास वारना।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय।

साथ करे बल जाओ, पुन रप जन्म नहीं गुण गाओ। अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप शाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द वरे तिन कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल परगासा, जो दिस तो आस नरासा, ताम क्रोध बिगपूग प्यासा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी मोहल्ला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे ससोई, दर्शन देख पई मदपूरी, अड़सठ

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिर पवन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेव, बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप पुलाए आपे मत देव, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दय सिंघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साहिब भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रि सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सच पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, पर पंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कावल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द बीचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूड सुहा।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे ना लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बहुत पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख।

ले आप हो जाओ। मन मुख सूत कभे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कहे न आए। रहाओ सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे है सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख सोभा साज दुआरा। पंडित हर पढ़त जो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहु चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजों लाए भये नित्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पत नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। ए जोका धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथ अगे हर नाम सिखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिव लाए। हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा दे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोए नट बाजी पाई, मनमुख अंदर है लपटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर से न फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी गारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोए अद परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहु दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़भागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा। तेते उपजे दे मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम घर राखे सदगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा, नित काल संतावे। गुरमुख जम काल ने

पद पाईए नाम मने सो होय सगुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोय सगुर ते जो मोह फेरे ओए परम दे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विचता पए पचन इहो जग परम भुलाया मोहे ठगो ली पाए जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए सगुर सेवन सो सोहणे होमे महल गवाए अवधरते से निर्मले चले सतगुर पाए हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए जन नानक शरणागति जो पावे।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सजम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छोड़।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

भावे अन ना पानी, पानी अन ना भावे, मरिए खावे, पिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, जो मिले तवे मिलाईए, आपे मिल ले सुखदाता, आ मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना तिर मरे न जाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, कामन हर रस वेदी जियो, हर के सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज सुमाए, दुबदा सहज सुमाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, यो शरीर कूड़ कुसत भरिया, गलताई पाप कमाए, गुरमुख भगत

प्यारे अरायण सु सुती जियो अंतर उरथारे अंतर उरथारे मिल गए प्यारे अन दिन दुख निवारे अंतर महल फिरावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सीगारे सच शब्द सीगारे हो मे मारे गुरमुख कार्य सवारे जो जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर बीचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किसे आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाओ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगण बख्शनहारा कामण कंत प्यारा घट घट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है सदगुर बूझ बुझाई सदा आनंद रहे दिन राती आनंदन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सात हन नौ निध पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरतै जियो क्यों कर दुत्र तरिया जाए राम नाम कर भुथा जियो शब्द खेबट विच पाए शब्द खेबट विच पाए हर आप लंघाए इन विद दुत्र तरीय गुरमुख भगत प्राप्त होवे जीवतियां इओ मरिए खिनमय राम नाम के लिख काटे।

अगर पाए रसना शब्द सुहाए, नाम त्याय सुधा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजे नामे बिनस, नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाईए, आपे लय लवाए, ए वडाणी चाकरी पराजियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किने सुगना पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए, बिख्या लोभ लुभाए परम फुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी वडाणी खरी दुखाली, आप वेच तरम गवाए, माया बंधन टिके नाही, खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तवे चूके, जां गुरसबदी चितलाए, मानमुख मुद गवार पिराजियो, शब्द मन नाम साए, माया का परम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सदगुर पाए, मनमुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले, गुरचरणी चितलाए, जिसनु हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए, राग गौड़ी शांत महला पंजवा।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन अपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाण कर करे उपायो जन्म मरण मनमो बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खा पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तदा

तर फत ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुंत कस जोग न हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक। ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी। श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पद ठोर। नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया। गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते। उर्ज परे सो छोड़ छिड़ाना देवन हार मने बिसराना। तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही। श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय। आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए। पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे। इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने। ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया। कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए। श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभे आप बस आपन हो करे। नानक बिन हर खां कमात। पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा। या जुग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो

के मोहे न बुझे हो प्रभ सदगु संग लेख गणत न छूटी है काची पीत न शुद्ध जिसे बुझाए नानका ए गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखो तुर जाके हर संपे नानक करता के सलोक लालच चूड़ बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्म मरना ज्यो जो हुक्म तेरे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसरा हई अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो मनहार हो सद आया ओवा का अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस से जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनद नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम है राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर कै दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे

एक नाम ले मने परो यैया जन्मनहारिये और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ये बिखया दिन चार छे छाड़ चले सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपट रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहे अब टहे परे साजना सरनाए, दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

पातलपावन अगम हर राया होत मुनीत कोड अपराधु अमृत नाम जपे मिल साधु पर पत्रोम हो मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पात साहो छत्र सिर सो नानक दूसर अवर।

ते संग मांगन तेजे तुम रखो तो नानक नामे रंग पौड़ी मम्मा मांगन हार ए आना देन हार दे रहो सुजाना जो दीनो सो एक है बार मन मूर्ख कह करे पुकार जो मांगे तो मांगे बिया जाते कुशल न कहूतिया मांगन मांगता एक माक नांग जाते परे पराग श्लोक मधपुरी प्रदान ते गुरपुरे मनमंत जे जान्यो प्रभे अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मरम पछाना भेटत सा संग पतियाना दुसुआ के संत बिचारा नरक सुर्ग रहत अवतारा ताहू संग ताहूर निर्लेप पूर्ण कटकट पुरख बसेख हो रसमय तवाहू सो पाय नानक लिप्त नही ते माया श्लोक यार मीत सुन साजनो बिन घर छूट नाहे नांग ते बंधन कटे गुरकी चरणी पागे पवड़ी यैया जतन करत बो विधिया एक नाम मिन कह लो सिधिया यौ जतन कर हो छुटारा।

दृष्टि आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना।

मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जे महाभयान दूध जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै। जे मुश्किल होवे अद पारी हर को नाम खिर महे उधारी। अनक पुने चरण करतनी तरै हर को नाम कोड पाप पर हर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सरसठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिघना बुझावे हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग इहो जात अकेला तै हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आईए नानक गुरमुख परम गद पाईए। टूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराही। अनक विघ्न जय आए संघार हर का नाम तत्काल उधार। अनक जून जन्म में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कभू न थोवे हर का नाम कोड पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग। जे मार के गणे जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पंतेरा को

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

सगल कटाको देव उदान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी, अपनी गतमित जानो आपे, आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक, निर्गुणियार ए

अंत सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई, पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्त कारण विखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, जे ठाकर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सौ अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्त आगे रख, प्रभु की आज्ञा माने मत, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया सो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चलनहार, लपट रहो तय अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्त, मिथ्या त्रो मो अभमान, मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर, मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर्वकार को थावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासले दिवकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पए, सबल दे नानक हर हर नाम ले, बिरती सागत की आरजा, साज बिना के होवत सूचा, बिरता नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिगाए, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जान नहार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आपत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रवजाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप कर तन बेरा, किसे दूर जिनावत, किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान पर सगल

सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंच मन अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मय ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सरा समंदर सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता।

बेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परे पुकारो माह। ब्रह्म ज्ञानी कह नागी तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सोफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता, ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

कोय, आपे आप नानक प्रसोय। कई कोड़ पार ब्रह्म के दास, तिन होते या तुम परगास। कई कोड़ तत् के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीव, अमर भय सदही जीव। कई कोट नाम गुण गाव, आत्मरस तुग सह सुमाव। अपने जन कौ सा सा सुमार, नान कोई परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोय। नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय। अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तु भावे सोई होग। खिन में था भी था पनहार, अंत नहीं किस पारावार। हुक्मे तार अतार रखावे, हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा सुमाई। प्रभ भावे मानुख गद पावे, प्रभ भावे ता पात्र त्रावे। प्रभ भावे बिन सास ते रख, प्रभ भावे ता हर गुण पख। प्रभ भावे ता पत उधार, आप करे अपन विचार। दुआ सिरिया का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर जामी। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानुख ते क्या होए आवे, जो तु भावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तु भावे सोई करे। अनजानत बिखिया में रत, जे जानत अपने आप बचे। परमे पूला दर्द तावे, निव कमाए चार कुंट फिरे आवे। कर कृपा जे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दिश कछु न आवे, तिस तत्काल दैज प्रटावे। जाको अपनी करे बगसीस, ताका लेखा ना गने जगदीश। जियो पिण सत की रास, घड़ घड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बाल नहीं इस हाथ, करण करामन सर्व।

हर करंग हस कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू महा क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बहे बड़ राजा कभो पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यू प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक हो ज्ञान कभू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभु की जोत सगल कड़ सोह तनवंता होए क्या को गर्भ।

संतन कर पाया तज अभमान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संतह संचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोय मोख उजल हर दर गह सोय यो वापार विरला वापार नानक ताके सद बलिहार चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवावड पागी पाई है साध संग घर कीर्तन गाई है अनक विघ्न ते साधु राख हर गुण गाए अमृत रस चख ओढ़ गई संते दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीव लनहार भूखे को देवत आधार सर्वनदान जाकी दृष्टि मागे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस तिसका हो करने जोग जिस बिन दूसर हुआ न होग जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊज निर्मर ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मर।

अनद रूप मंगल सुध जाक सर्व थोक सुनहे कर ताक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान।

नाम कै रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की रखे निरंकार। सो सेवक जे दया प्रवतार, नानक सो सेवक सास सास सुमार। अपने जन का पर्दा ढक, अपने सेवक की सर पर रख। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत रख, ताकि गत मित कोई ना लख। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊचते ऊचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल रख, पसम करे लस्कर कोट लख। जिसका साधन काटते आप, ताको राखत दे कर हाथ। मानस जतन कर्तव पात, जिसके कर्तव बिरथे जात। मारे ना रखे अवर न कोय, सर्ब जिया का रखा सोय। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, ई अमृत यो मन तन त्रपिए। नामरतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही त्रिटाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन त्रिवतान ने, मन तन नामे नाम सुमान।

भगत आत्म कैचाए प्रभ अपने सो रह सुमाए जो होआ होवत सो जानै प्रभ अपने कहो पछानै जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे दिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता इसकी शरण सर्व सुख पावे।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साधक संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदय में उरतारो करण कान सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मै हर नाम दान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन न लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजिए मलहो में कड्डे तोय, सच वणन जय रंग स्यो सच सौदा होए, टूटा मूल न आवई लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साराई सच सालाना सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे सच सच्चा हरख वाले, सच सच्चा जिनी आराध्या थे जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी ना सेवया थे मनमुख भूड बिताले, ओ आल पताल मोह बोल दे ज्यों पीते मद मतवाले,

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवां नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई ते सियो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगला मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। सलोक महला पंजवां डिठड़ो हबठाए ऊण ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवां दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नावज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना काणी मस्तक होवे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवां अंतर चिंता नैणी सुखी